0: बम बैटेलर भुरीगाउँ बजार बर्दिया। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 84 45 875।
1: दिनका कामो टाटल भयाल बहक निसेक जाए मै त बिहान नि खेत बजाइ दुना खाए
2: बाबा लोई छाता फेले जाओ खेत वासे लौट बेर महा कर घाम रखा
1: ए का बिस्नु कलर त छाता बिसाइ टुका हुँ लान त छाता ओहो मै त यी पानी बोटलिम जीवन जल मिलाइदि सारनु
2: तु बिस्ताजी ठोकैका मै त मन पानी जीवन जल मिला खाएर रोक्नु बाबा बेन्सु यी पानी भरि सक्कु पि होना
3: गर्मी मौसममा लु चिटिङ्गा घामुनसे बचकला छाटा नकि कपार छोपनेगी ध्यार से ध्यार पानी पिए शरीर जू ढरक लाग मौसमी फलफुल खाई ओ घर स्कुल के छानी जुरार बनेना जुगार लगाई
4: प्लान इन्टरनेसनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारीमा बर्दिया जिल्लामा सञ्चालन हुइरहल विपद पूर्व तयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजनाद्वारा जनहित के लाग जारी सन्देश
5: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन सधैं बाजिसै

मैं इम्पोर्टेड आशिक हूँ बट यू मैं लव क्या जाने, लंदन से अमेरिका तक मेरे कितने दीवाने, आई कम इंडिया फॉर यू डार्लिंग, तू माने या न माने।